संत नाम के तोर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के पर ले पंडार नानक गुरु

गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन्म पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संवाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया ऊड़े ऊड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे चरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन।

दिल जिस नहां तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए।

चौ पई हमरी करो हाथ धै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबहो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभे करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरण को आ संघरिया।

वर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करे और अच्छा। राख ले हो मोहे राखण हारे, साहे बसंत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो।

कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल स

सकलमले छिकर ओरण काता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संग

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरण शुभ राता, किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज पहे दयाला, पूरण करा ग्रंथ तत्काला, मन

मूड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुण।

निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दय हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता विद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र विचारो चूक होए कबले हो सुधारो कभ्यो बाच दोहरा जो निज प्रभ मोस

ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समा है। दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म तरा जगयाय। अब मैं कथा संक्षेप ते समहू कहत सुनाय। कबे बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को।

कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद चह सके न कोई संबत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधा।

आईया रागर तन परवार परिया शब्द गावणे आईया शब्दो तक अबो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवार।

पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लगतरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु प्यारी साहब संगत जी, सत्कारयोग विरागी जथा भाई साहब भाई विरयाम सिंह जी हुणां दी रसना तो शब्द कीर्तन सरवण करके अपने समय सवासा सफल बनाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

भगवान सगल समगरी तुमरा सूतरता तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लईं आय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसों ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जी का ध्यान तरके बोलो जी। जिन्हां सिंह सतगुरां दे साजे निवाजे पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीती।

के आकल लामा के साहिब कलामा के हुस्नुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशल सलामा श्री खुतम दामा गनीमुल सकस्ता गरीबुल परस्ता बिलंदुल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमामा रुजूल निदाना हरीफला जी मै रजायक यकीन नेकुल तरंग है भेद है पंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सो जुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाध स्वरूप है गाध है अनूप है ओ अंग आदि रूपे नाद स्वरूप है नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे गंजे अगाधे सुबंग सर्व भागे सो सर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है छिज है छूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंदा अपंग है नंग है पेख है देख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है जय है बै है भूत है तूत है नाश है उदास है तंद है बंद है भक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लिख है देख है लेख है पेख है टाह है गाह है असंभ है गंभ है नील है नाद है नित है सुनित है जात है जाद है चत्र छंद त्व प्रसाद

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितो मीक है सदैव प्रभा है जय है जा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जुहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी देहंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाय करीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सुरबुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमीश हैं समस्तुल अदीस हैं देशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के मितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मितो बेपूत हैं के मितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग नंग हैं के मितो भंग हैं मद भार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबरागंज हर नर प्रभांजा नंगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर मंड अनुभव अनाक मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदामा निछे जंगा सना भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाथ त्रिहतर त्रास आ जान बाहु एक सदाहु ओ अंकाराद कथने नाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछे जगात आज जनमबात अनचंजगात अनरंज बात अनपट भंडार अनठट पारा डीठ सरमत डीठ कर मान ब्रण अनंत दात महंत हर बोल मना छंद प्रसाद करुणाला है रकाला है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर हैं सर्वं कर हैं सर्व पास्या हैं सर्वनाश्या हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंड हैं खलखंड हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अमृता अमृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं तरणी तृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अजबा कृत हैं अमृता अमृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणाल हैं निरपनायक हैं सर्व पायक हैं पपंजन हैं रगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्मा हैं सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं पोजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं बिभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय ल पू जू नास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गटाह नाथ प्रमाथे जोनी मोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेख
पोजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल नेवासे निरकामें विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सुतर्मं विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुलक निंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दोकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विपूते

देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा अपनी बूझ उचारा तुम सब ही तेरे हत निरालमा जानत बेद भेदा।

पाहना अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैबा आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाय चम भव आजुगा स्वरूप संयम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तत्पाता सकल मलेच करो रणकाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुआ सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै ले हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाय दुष्ट दुख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री अस्तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावै सोई दुख न तिसा व्याप्त कोई अड़ेला सुना गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुना मूढ़ चित लाए चतुरता वई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजर्द सहस पुनती

हूँ मैं हो जाता हूँ मैं कर्म कमाए हूँ मैं यही बंदना फिर परिजोनी पाए हो मैं कितों पुजा किसने में जाए हो मैं ये हुक्म पै करत पराए हो

जन करता है करणा की आलिक चिंता पे करनी ता सो करता है चिंता करे जिन पाया जग तेज जुआरी स्वास्थ्य तेज ते पाड़े पग नानक सच्चे नाम बिना।

0: सच्चा साहेब से सवाले जिनकी तिसो पार पया कहो नानक कर देखे बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा
1: जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्रह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम पराकृत है।

पौड़ी साहेब दयाल कृपा करे ता साहे कार कराए सी सो सेक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म ने हुआ प्रमाण तक खसमै कामेल पाए सी खसमै भावे सो करे मन हो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए।

और जिस सुख पाइए सो साहिब सरस महलिए दिक्की त पाइए अपना सा खल बरी क्यों खालिए मुंदा मूल ना किचे दिल मिनत निहालिए।

ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਮਾਨ ਲਾ ਤੂੰ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਗ ਮਾਨਸ ਜਨਮ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਸ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸ ਆ, ਮਾਨੁੱਖ ਆ, ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁੱਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਉਰਦ ਮੁੱਖ ਰਹਿਤਾ, ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੁੱਠਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 9 ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਕਾਰ ਏ ਵੱਡਾ ਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤੇ ਸਾਗਾ ਰਾਖਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਰਾਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਾਹੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਹੈ ਬੇਗਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ ਰਹਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਪਛਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਾ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ,
लेकिन चिंता दे दीन गए ने, चिंता दे रोग लगे हुए ने। सो वड्डा जिन राम लिबलाई, अपना फैसला दिता सी वड्डा वो है, महान वो है जिन्हें वाहिगुरु दे नाम विच चित बिरति एकागर की करके जोड़ी है। हुमें दा त्याग किया, नीमा रखिया हिरदे नू। मेरा मेरा कर बहुत पछताने, मेरा मेरा करके थे बहुत पछता के गए ने वड्डे वड्डे। हरनाक्ष नू पछताउणा पिया सी, खीर ते मार खाधी सी। मेरा मेरा ही करदा सी, कहिंदा नाम ही मेरा जपो, रब कोई है ही नहीं, मेरा ही नाम जपो। सो मार खाधी सी, पछताउणा पिया सी, मरन लगे। इसे तरह रामन ने भी मार खाधी है, बड़ा बली सी। उहदे विच भी हउमै सी, हंकार सी, मेर ही सी। किसी की गल नहीं मनता सी, अपनी मनाउंदा सी, किसी की सलाह नहीं मनी सी। पूलो रावण मुगद अचेत, धन गुरु नानक देव साहब। पूलो रावण मुगद अचेत, लूटी लंका शीस समेत, सिर दे समेत लंका लुटी गई, सोने की बनी। ये हालत हुई सी, दो रत्तियां सोना मूँह विच पाउण नूं नहीं मिलिया सी, डिगे पए दे सड़न तो पहला। कैरों ने भी बड़ी, दुरयोधन वर्गे बड़े बली सी, उन्हां दे भरा कैरों जड़े सी, उन्हां भी नहीं बचन मन्या सी, नहीं अपने भरावां ते शरीकियां ते इन्हां शरीक पुणा कीता सी, नहीं मन्ने सी, हंकार ही कीता सी। तुसीं पंज पिंड कहिंदे इन्हां पंजां भरावां नूं गुजारे वास्ते सूई दे नक्के जिनी थां नहीं देवांगे। बनवास अगे कटिया, साडा राज आ, सानू सब कुछ हारिया इन्हां ने। कृष्ण जी नूं ठोके जवाब दिता सी, सौ साडे राज विच नहीं रह सकते, असी जिवें कहांगे उवें रह सकते ने, गोले बना के रखांगे। सोई दे नके जिन्ना थां नहीं दे सकते, इन्ना हंकार सी। मेरी मेर मेरी कैरों करते दुरयोधन से भाई, बारह योजन छत्र चला था दे ही गिरज न खाई। ऐसी हालत हुई सी। सो बड़ी मेरी मेरी की थी, महाराज सच्चे पातशाह जी बहुत पछता के गए ने, वड्डे वड्डे बंदिया तू ते की है, ते बहुत छोटा जीव है। मेरा मेरा कर बहुत पछताने, इत्थों मेरा है, मेरा राज है, मेरी धरती है, मेरा हुक्म चलना चाहिए। बहुत पछता के गए ने, बहुत मंदी हालत हुई है। देही पत्थर दी सी, अद्धी अद्धी मास दी सी, दोवें पाठ ही सिखाउंदे ने गिरज ना खाई जां गिरजन खाई। कई सरूपां च गिरजा ने खाधी सी, किसी ने चुके साड़े, कोई रह नहीं गया, सारियां कुला ही नाश हो गईआं सी, लखां बंदे मारे गए सी, शरीका कबीला सब महाभारत दे जंग विच, कोई साड़न वाला रह ही नहीं गया सी। वह जिन्ना शरीर सी गिरजा ही खाधा। फिर कई लिखिया पत्थर दी होई करके भी उत्थे ही ठूंगा मारिया, नहीं खाधी सी, भी यह तां पत्थर आ, होर शरीर बहुत पए सी, बंदे नाल बंदा लगा पिया सी, उन्हां उह खा ली। इहदी तां देही भी नहीं खाधी सी, पत्थर दी बणी करके अद्धी। नगन वाला थां सारा पत्थर दा सी, दुरयोधन दा। गिरज ना खाई, नहीं खाधी सी गिरजा ने, पई रही सी, रुली सी। जिन्ना वड्डा अहंकार कीता सी उन्ना ही रुलिया सी, जिउंदे जी मारिया गया सी मगरों भी रुलिया सी। ये मेर ऐसी है, बहुत पछताए सी रहाओ। धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने अगे, जो जो करा सोई मान लियो। ऐ भाई मेर का दिए छड़ के, जो जो वाहिगुरु हुक्म करदा है सतगुरु दे रूप विच, सोई मान ले हो, ओ मन लो, उनु स्वीकार कर लो। अपना अभिमान हंकार अपना छड़ दे, ऐ मनुख बिन माने रल होवै खे। जे वाहिगुरु दा भाणा ना मन्या, रजा विच ना आया, तां बिन माने रल होवै खे। बिना मने जिन्हें नहीं मने ना, सोने बचन निम्रता नूं धारण करन वाले, हंकार ही कीता उल्टा, रल हो वै खे। वो रल के मिट्टी हो गए ने, हो जाते ने,
तेरी भी हालत ऐसी हो गई। रल हो वह खेह, यह खेह जड़ी मिट्टी है ना धरती, ये च रल के मिट्टी हो जावे चाहते जी। क्यों वाहिगुरु सच्चे पातशाह का भाणा अटल हुक्म है, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझा तो हमें कह ना कोए। जिहड़ा उहदे हुक्म नूं सुते सिद्ध वरत रहे हुक्म नूं मन के स्वीकार करके उहदे भाणे विच रहिंदा, उहदे अगे न्यों जांदा है, वह मान पाउंदा है। वह होमै वाला बोल हंकार वाला कोई बचन नहीं कहिंदा है। जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया मद माता मरना चीत न आवै। वैसा गुरमुख हुंदा है, बिन माने रल होवै खे, जिन्हें नहीं मने बचन वाहिगुरु दे भाणे नूं रजा नूं हमें धारण किया, वो फिर सच्चे पातशाह दे अगे ते जोर ही किसे दा नहीं, जो करदा मनना पैंदा ना, फिर खे ही हो जांदा, फिर बंदा झूठा पै जांदा है, मिट्टी हो जांदा है। रल होवै खे वाहिगुरु दे मनन करन तों बिना फिर धरती दीआं जूनियां विच ही पैणा पवे। निखिध जूनियां जिहड़ियां मिट्टी दे विच ने बहुत जूनियां, सब आदक ठूए आदक बहुत जूनिया ने जिहड़ियां मिट्टी विच ही रहिंदियां ने। धरती खे होना पऊ, नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड्डा खे। हुक्म ते नाम जपण दा सच्चे पातशाह जी दी आग्या हर एक प्राणी मात्र। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए। वार वार जिथों भी बाणी नूं छो लईए पढ़ लईए, नाम जपण दा बाणी पढ़न दा गुण गाउण दा अकाल पुरख दे हुक्म दिंदी। जो हुक्म है आ उह बाणी समझाउंदी है, वार वार टुंबदी है, सुत्तिआं नूं जगाउंदी है। होका दे दे के हलूणे दे दे, क्यों कह लई जिवें कोई बहुता सुत्ता हुंदा उहनूं हलूणा देना पैंदा एक दो बार आ के, उठ भाई सूर चढ़ गया फिर की करेंगा, इउं तां नहीं कम होणे। कईआं नूं ऐसे सुत्ते हुंदे हलूण हलूण के ठाउणा पैंदा, महाराज वार वार सच्चे पातशाह हलूण हलूण होका दे दे के ठा रहे। सच्चे पातशाह यही हुक्म है नाम जप, जे नहीं उह मन्निआ बिन माने रल होवै खे, फिर धरती दीआं जूनियां विच ही आवेंगा, खे ही आवें। यह मिट्टी है देही, इहदा प्रयोजन है नाम जपना सिद्ध करना अपने आत्मा दे आनंद नूं। नहीं तो फिर नानक ढेरी शार की भी फिर होई शार, यह मिट्टी की ढेरी है तो मिट्टी हो जानी खीर नूं सुआह। तिसका भाणा लागै मीठा, जिस पुरश नूं जगियासु नूं उहदा वाहिगुरू का भाणा उहदा हुक्म मिठा लग्या, जिन्हें सुते सिद्ध वरतदा हुक्म एक रजा हुंदी है, करमां मुताबक जीवां नूं दुख ते सुख मिलदे ने। किसे नूं दोष देण दी बजाए दुख आउण ते उहनूं स्वीकार कीता वा, उहदे अगे हथ जोड़े सच्चे पातशाह मेहर करी अगे तों मेहर करी, साडे आपदे करमां दा फल आ। जिस पुरश ने अपनी हउमै नूं छड्ड दित्ता है, सुख आवे दुख वाहिगुरु नूं याद कीता उहदे सन्मुख रहा है, तिसका भाणा लागा मीठा। जिस ऐसे गुरमुख नूं पुरश नूं उहदा भाणा मिठा लगदा है, सोहणा लगदा है, गुर प्रसाद विरले मन बूठ। ऐसे गुरु दी कृपा द्वारा जिन्हें सतसंगत कीती ज्ञान हो गया, एक दा ध्यान फिर उहदे हैन विरले, बहुते नहीं हुंदे ऐसे पुरश। गुरु की कृपा द्वारा विरले मन बूठा, उस विरले किसी गुरमुख के मन विच फिर वाहिगुरु का ध्यान एक रस आ जाता है, मन बूठा मन विच वस जाता है। सच्चे पातशाह का नाम एक दा ध्यान, फिर आनंद ही आनंद सुख ही सुख। जिहड़ा बच्चा पिता दे अगे बोले, पिता सुख देवे दुख देवे घूर देवे झड़के, उदों भी गुस्सा ना करे, घूर भी खा लवे, वह बच्चा ही कामयाब हुंदा पिता की खुशी लैण विच।
परमात्मा सच्चे पातशाह गुरु दे भाणे विच जिहड़े सिख रहिंदे ने जे सुख दे तां तुझा राधी दुख भी तुझा त्याई जे भुख दे तां इते ही राजा दुख विच सुख मनाई जिहड़े भाणे विच रहिंदे ने सच्चे पातशाह दा शुकराना करदे ने नाराज होण दी बजाए उन्हां दे फिरे बख्शिश हुंदी महाराज प्रसन्न हो के जिवें पिता बच्चे नूं खुश हो के ये सियाणा है ये मार भी खांदा घूर भी चलदा है सारा कुछ अपना दे सुख दे तां मन बूठा सच्चे पातशाह प्रसन्न हो के अपने नाम दी दात उहदे हिरदे विच सिख दे वसा दिंदे भाणा मनना हुक्म दे विच रहना सब तों वड्डी दात है गुरप्रसाद विरले मन बूठा तेरा भाणा मनना है सो मिला तुद आए एडी वड्डी दात आ भाणा मनन वाले महाराज उस वेले मिल पैंदे ने सच्चे पातशाह हिरदे विच नाम वस जांदा है गुरप्रसाद विरले मन बूठा गुरु की कृपा द्वारा विरले गुरमुख दे मन विच वसिया वे परवाहो गोचर आप क्योंकि वह तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह बेपरवाह है उन्होंने तो परवाह नहीं जे कोई नहीं मनेगा वो खिलाफ बोलता है भाने दे उल्ट रब न उलांभा दिंदा गालां कढ़दा उहदा तो कुछ नहीं जांदा उहदा कुछ नहीं घटदा वह बहुत वड्डा बेपरवाह है उन्होंने परवाह किसी की नहीं बड़ा डाढ़ा है सच्चे पातशाह अगोचर आप वह इंद्रिया के विषय विच नहीं है शरीर करके नहीं हो किसी के सामने आता भी कोई वो लत भन लूगा सो वह नुकसान कर दूगा वह तो अगोचर आ इंद्रिया के विषय विच नहीं है इंद्रिया के गोचरे ने नहीं है जिवें साडे शरीर ने अखां वेखदियां ने पंज ज्ञान इंद्रे पंज कर्म इंद्रे ने हथ पैर ने बाहां ने कोई किसी नूं माड़ा दुख दिंदा बंदा बांह तो फड़ लैंदा कुछ बोलदा वा कर गल मेरे नाल ऐसा तो हो ही नहीं सकता सच्चे पातशाह कर्मां दा फल दिंदा वा वह बेपरवाहो गोचर आप उहदे कोले शरीर नहीं इंद्रियां दे विषय विच आउण वाला नहीं है जोत स्वरूप आ आप सच्चे पातशाह इस करके उहदा कोई की बिगाड़ लवेगा अठ पैर मन ताक हो जा सुख इहदे विच आ खुशी उहदी इहदे विच दुख सुखां विच बदल दिंदा जिन्हां ते प्रसन्न हो जांदा है एडा वड्डा दयालू भी है जिथे कर्मां दा फल भुगतांदा वा दयालू कृपालू बहुत वड्डा सच्चे पातशाह आठ पैर मन ताक ओ जाप ऐ जीव तू मन करके अठे पैर उठद्यां बहिंद्यां खांद्यां पींद्यां सौंद्यां करद्यां वाहिगुरू नूं जाप उहदा जाप कर इकदा ध्यान कर वाहिगुरु जप ये कम कर लै फिर सुखी सुख जिस चित आए बिनसै दुखा आठ पैर जाप तां करना भी चित विच वस जावे गुरमुख जिहड़ा भाणा मनदा गुरु दे सनमुख ते आके वस ही जांदा अपने किवें वसेगा महाराज कहिंदे उहनां दी रीस तूं कर जिहदे आठ पैर जपन नाल चित विच आ के फिर उन्हें ऐड हो जाना हिरदे दे विच एक दिन जिहड़ी गल आपां वार वार करिए फिर हिरदे विच वस जांदी निकलदी नहीं वो याद रहिंदी सिमरती विच आ जांदी सिमरती विच आ जाएगा फिर वार वार तां अभ्यास करना वा हर रोज नितनेम तां करना फिर एक दिन कंठ भी हो जांदा मूंह जवानी फिर हौली हौली मन दे नाल अटैचमेंट हो जाती उ आनंद साहब हुंदा वा बंदा कहिंदा 20 साल पहला भी करदे सी आपां मना उदों क्यों नहीं आंदा अज आनंद आंदा आनंद साहब दा आंदा इन्ना आनंद है आनंद साहब दे विच जिवें जिवें अभ्यास करांगे उवें कृपा आउंदी जिस चित आए बिनसा दुखा जे वाहिगुरु दे चेते विच आउण नाल जदों मन दी हिरदे दी अटैचमेंट होगी फिर सारे दुख नास हो जाए फिर सुख ही सुख आनंद ही आनंद आवे हालत पालत तेरा उज्जल मुखा महाराज नाम दीआं बरकतां दरसा रहे ने फिर हालते लोक विच इत्थे हिलद्या होया हाल तो भाव जिन्ना चेरे शरीर धारण किया हिलजुल आ किरिया करता तुरदा फिरदा संसार ते जाना उन्ना चेर रहिंदी जिंदगी भी
हालत पलत परलोक विच पलट के पल दे विच ही जदों यह शरीर छुट जाना ते अगे जाना रूह ने यह लोक परलोक विच हालत पलत तेरा उज्जल मुखा तेरा मुख जिहड़ा उज्जला होवेगा निहाल हो जावेगा सन्मान मिलेगा सत्कार मिलेगा खुशी मिलेगी कोई झटका नहीं मिलनगियां कि तेनू घबराना पवेगा त्रेली आवेगी सो मूँह का रंग पीला नहीं पवेगा खुश होवेगा तेरा उज्जल मुख जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटा कमाने पाप चराने साध संगत मिल मुआजी यही बख्शिश होवेगी कौन कौन उधरे गुण गाए महाराज जी खीरली पौड़ी विच बख्शिश कर रहे हैं धन गुरु अर्जन देव साहब भी गुरसिखो वाहिगुरु दे गुण गाउण दा उपदेश जिहड़ा असीं तुहानूं दे रहे हैं निष्काम हो के हिरदियों बाणी नूं गा के वाहिगुरु दी सिफत सलाह दा जस करके कीर्तन भगती करके बाणी गा के नितनेम करके सेवा सिमरन करके कौन कौन उधरे गुण गाए वाहिगुरु दे गुण गा के किहड़े किहड़े किन्नां किन्नां दा उधार होया किहड़े किहड़े पार होए ने संसार समुंदर तों गणन ना जाई कीम ना पाई महाराज कहिंदे हो एक नी दो नी चार नी हजार नी उते करोड़ां ने लखां करोड़ां ने गुरमुख लखां करोड़ां जीव ने आदकाल तो लैके जिन्हां नाम जपिया है सतयुग शुरू हुंदा ना सतयुग तो छोटे छोटे बच्चे ही सी ए ध्रुव ते प्रहलाद जी जिन्हां नूं मार भी पई घर दे विच्चों प्यो ही एंटी सी इहदा जपन नहीं देना फिर भी गुण गाए राम कहा करताल बजावे चटिया सभा बिगारे राम नाम जप बो कराए हिरदय हर जी को सिमरन धरा हथां ताल बना के प्रहलाद गुण गाउंदा सी मदरसे दे विच सारे बच्चे ही क्लास दे ला लए सी नाल गुण गाउण राम राम दे उदों तो लै के हुण तक कलू दा समा चल रहा किन्ने ने कोई गिणती नहीं है कौन कौन उधरे गुण गाए वाहिगुरु के गुण गा किन्नियां दा उधार होया बेशुमार जीवां दा उधार होया जिन्हां गुण गाए सच्चे पातशाह कीर्तन कीता कीर्तन सुनिया भगती कीती गणन न जाई कीम न पाई वो गिने नहीं जांदे गणन गिने नहीं जांदे उन्हां दी कीम गिणती नहीं कोई पा सकता गिणती हो ही नहीं सकती सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज जी सारे संसार विच जा के नवां खंडां दी धरती ते सत संगत कायम कीती है बाणी तुरों आई होई बख्शी है बाणी दा नितनेम दिता है सच्चे पातशाह जी ने इन्ने तारे है कवि जन लिखदे ने तारे गिने जात तेरे तारे ना गिनात है धन गुरु नानक देव साहिब महाराज काश दे तारे कोई गिन लवे तो गिन लवे बड़ी औखी गल है असंभव है कोई विज्ञानी गिन लवे पर तेरे तारे हुए संसार समुद्र तो जीव नहीं गिने कल जुगी इन्हें तो तुसा बख्शिश की तेरे तारे ना गिनात है जिन्हां ने बाणी गाई सतसंगत की गणन ना जाई कीम ना पाए वो गिनती नहीं उन्हां दी कीती जांदी उन्हां दी कीमत पाई नहीं जा सकती सो बेअंत ने बेशुमार बूढ़त लोह साध संगत है गुण गाउण वाले तां जिवें लोहा हुंदा ना भारा ते डुब जांदा पानी विच लोहे दी नियाई जिहड़े पापां नाल भारे सी द्वैशी ईरखा दे नाल जंगाले होए मन सी मनूर लोहे वांग जे सत्संगत विच आ के शब्द कीर्तन नाल जुड़दे ने गुण गाउंदे ने ऊड़त लोह साध संगत ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆਰੇ ਜੀਵ ਔਗਣ ਆਰੇ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨਾ ਢੋਈ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਭਾਰੇ ਕਠੋਰ ਮਨ ਦੁਆਸ਼ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਤ ਦਾ ਮਨ ਸੋ ਬੇਮੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਹੇ ਭਾਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਟ ਕੇ ਹੌਲਾ ਫੁਲਕਾ ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ।

वैसे फतक संबंधी नूर अरसा हों कुरसा हों चटिया तुद डिठे सचे पाते सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर सांद साहो जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाहो जिस पास बैठिया सो ही है

मामा कृष्णा जी ते सारे होर जिन्ने रिश्तेदार सन सारे ओ सोहणिया घोड़िया ते रथां ते ऊठां ते हाथियां ते चढ़ के ते गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कीमती पोशाक इतिहास ने कहा कि कहिंदे भी पीले रंग का चोला जिहदे उत्ते बड़ी सुंदर नक्काशी होई हुई सी जरी दी और उहदे विच सोने दीआं तारां दे नाल कढ़ाई की हुई सी बहुत कीमती वस्त्र ते तैयार पता किने करवाए सी गुरु नानक नूं रब समझण वाली उहनां दी भैण बेबे नानकी बड़ा सुंदर चोला आओ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ।

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सत